न होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया।

चारे गावण तुदनो जति सती संतोखी गावण तुदनो वीर करारे कावण तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगमश प्याले गावण तुदनो रतन उपाए तेरे अठसठ ती

आस निवरय पूजो सदा हमारे पच्छा श्रीयास्तु जु करियो रक्षा राख लेहो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय।

भी हुआ है, वह उसका विश्वास न हुआ जिसके पास तथा प्रभु आज्ञा माना बात है। उसकी चाहो गुण करण हर नानक साहिब सदा दयाल पदमय की हित सरपर्वत जानन युत बृखिशा सिंह रंग लावे ऊह बिनसा मन पुछतावे जुदी सचलन आर लौट रही होते हैं अंधार बटाऊ सिंह जलावे निहता को हाथ न आवे कि मन हर के नाम प्रीत सुखदायी कर कृपा नानकाय बोले लाई मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया मिथ्या होमय ममता माय मिथ्या राय जोवन तन बाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रुव मुह मन मिथ्या आप सुप्रकृत कुमार असथिर भगत सात।

सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञान निर्मल ते निर्मला जय हमैर नराग जरा ब्रह्म ज्ञान का मन हो प्रकाश जय दारू प्राकाश ब्रह्म ज्ञान का मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञान का नाह अभिमान ब्रह्म ज्ञान ऊच ते ऊंचा मन अपने है सब दिन ऊंचा ब्रह्म ज्ञान से जन पाए नान जन प्रभाव क्रिय ब्रह्म ज्ञान सकल की नाया तुम रह ब्रह्म ज्ञान चिंदा ब्रह्म ज्ञान की सब उपरमाया ब्रह्म ज्ञान तिकाश पुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञान सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञान की दृष्टा अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञान बंधन।

निराकारु सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख साई निर्वाण ब्रह्म ज्ञान कन विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कवियता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंत ब्रह्म ज्ञान का नरवंत ब्रह्म ज्ञान जस करा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ पागी पाई ब्रह्म ज्ञान का बार बार जाइया ब्रह्म ज्ञान का जहम ईश्वर नान ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सकल मान वाह ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पियत ब्रह्म ज्ञान को सदा दीस ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जाया दाखी और ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मित कानो बखान ब्रह्म ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञान का अंत न पा नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीवन मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जिया का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष प्रधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ कनाथ ब्रह्म ज्ञान का सब उपरहात ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान अवन रंकार ब्रह्म ज्ञान शोभा ब्रह्म ज्ञान बनी नानक ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन सर्व कुर तार जो अंतर्नाम शर्मा पीखा भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सकल ने तारापति मिथ्या नाह रसन परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रियारूप न पीख नेत्र सादगी टहत संत संहित कर्ण न सना काहु की निंदा हत जान कमंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बाहन मंत्र टर इंद्री जेत पंच दोष तेरह नान कुट मध्य कुछ परस वैसन सोज हु प्रसव प्रसन्न विष्णु माया दुहि पेन कर्म कर तो वह निह कर

तैसा सुवर्ण तैसु सुमाटी तैसा अमृत तैस बेख खाट तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजा जो वरताय साई जुगत नानक पुरख कही आय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाय जित जित कर राख तैसा तनाय अपी करण कराउ जोग प्रभ पावे सोई फन होग पैसर व्याप हो अनत तरंग रखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मद जी तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश

वह वेदांग प्रकार अष्टपदी कई कोट हुई पुजारी कई कोट आचार व्यावहारी कई कोट वायु तीर्थवास कई कोट वन प्रमहदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोत कई कोट आत्म त्यानंतार कई कोट कव का विचार कई कुंडावतन नाम त्यावनान करते कंदना पाव कई कोट पय अभिमान कई कोट अज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघात अनकोर कई कोट पर दर्व कव हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम वाह कई कोट प्रदेश परम वाह जेत जेत लाभ तेत तेत लग्न नान करते कि जान करता रचना कई कोट सेत जति जोगी कई कोट राज रह पोगी कई कोट पंखी सर व्यापाई कई कोट पाथर बिरख ने बजाय कई कोट पावन पाण व्यासंत्र कई कोट दीस पूमंडल कई कोट शशि और सूर नखियात्र कई कोट देव दान मंदिर सर शातर सगर समाग्री अपने सूत तार नानक जेह जेह पावे तेस तेहन तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत रसासत कई कोट की रतन समोद कई कुंडन प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर सवारण थीवे कई कोट जाख किनत पिशाच कई कोट पूत प्रेत शुक्र मृगा शब्द निराय सबूते तू नानका रिप तरह पार पूर कई कोट पाताल के वास कई कुंडर स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव हमर है कई कोट बा जोनी फिर है कई कोट बैठती कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत

पटावे। जा कहो अपने करा बख्शिता कली खाना गना जगदीश है जी पिंड शब्द किरास कट कट पुन परम्पर कह अपनी बैण तनाई नानक जी अधिक बटाई उसका बैल नाही सहत कर्म क्रम सरगुनायत आज्ञा कारी बपरा जी जो पावे सोई हन थियो कबहू जनी च मह बसा कबहू सो घर खरंग हसा।

घर निजगर साजा कबहु आप कीर्त महाव कबहु परा परा कह ज्यों प्राव राख देव हिराह गुरु प्रसाद अनुसाज कह कबहु हुए पंडित करे बख्यान कबहु तारी लाव ध्यान कबहु ताड़ तीर्थ स्नान कबहु सेद साधिक ज्ञान कबहु कीटस्त पतंग हुए जियान जन परम परम ज्ञान अन रूज स्वाग दिखा ज्यों प्राव पावत बन जावे जो पावे सोई हुए नानक तू जावर न कोई कबहु सा संग देहु पावे सा स्थान दे बाहर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उषा स्थान कन विनाश मंत नामृति क्रंग सदा बस पार ब्रम का संग ज्यो जल में जलाय खटान त्यों ज्योति संग जो समान मिट गए कमन पाए बिश्राव नानक प्राव का साधु प्रभायन श्लोक सुखी बसा मसकिनिया अनवार तली बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गलियापति झका अंतर राज अब मानस नरक पाती होत स्वयन जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जनता उसका कर्म वंत कहावे जन्म मर वह जोन परमावे तन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जो हृदय गरीबी बसावे नानकी हम मुक्ता का सुख पावे तनवंता हुई कार कर बावे तृण समान काश संगना जाय बहलस कर मान ऊपर कर आस पर पीतर दाक हुई बना सब त्या जाना बलवंत खेन मैं हुए जाय बसमंद कहना बाधा आप अहंकारी तनव रह तो करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे अब मन सो जन नानक तरक प्रवान कूट कर्म कराय हव तारी श्रम पाव सकृ बिर थारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर फिर अवतार अनक जतन करा तुम न द्रवै हर तरक कहो कैसी कहवे आप सब जो परा कह तो सब पलाई निकट ना वे सर्व गिरी जाका मन हुई कह नानक ताकि निर्मल सो जाओ लग जा न मुझ दिकाश हुए तब सिखाओ सुख नाही कोई

सुभावंत सक संसार उद्रा तनमंत प्रभु शिव सक उदारण प्रभु शिव दूब शरण अपिमील लय कृपार गुर का सब जा पै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करह बड़ भाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर्मान जो किछ करै सो प्राप्त कर रंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाय हुआ सोहे करण हर पुछाण सो प्रभु का किया जन मीठ लगान जैसा सा तैसा दृष्टाना जिह ते उपजे तह वाहे समाय सुख निदान बनाय आप सकवा दीनो मान नानक प्रभु जन पूजा सलोक सर्व कला भार गुर प्रभु रथा जन नार जाक सिमरन दरिया नानक देह बलहार अष्टपति टूटी गांड नार गोपाल सर्व जी आप विप्रत पाल सगल की चिंता जिस मन वाहि देह ते बिरथा कोई ना हिरे मन मीर सदा हर जा अविनाशी प्रभा पिया पापन किया कछ न हो जी साओ प्राणी लोचा कोई ते सबैन ना ही तेरा किस काम का नानक जा भी कर नाम और गोपवंत हुए नाहि मोह है प्रभु जो सकल काट सो है तनवंत हुई क्या को करवे जा साहब की शरत का दिया दरवे तो सूरा जी को कहावे प्रभु कला बिना कहता जी को हुए वह दातार देह दिन हर जान गावर जिस गुरु प्रसाद टूटा रोग नानक सो जा सदा रोग जो मंदिर का थम थमन त्यों गुरु का सदमन है थमन ज्यों पा खान नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत न तरह ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन ज्यो मन हुए विकास ज्यो मह उद्यान मह मार्ग पाए तुम साधु संग विजोत प्रगटावे तुम संतन की बादशाह तूर नानक लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइया ऊपर लिख का लिखा पाइया दूख सुख प्राप्त दीवन हार अवर त्याग तू ते सहज तार जो काश करे सोई सुख मान पूला काहे फिर जान कान बस आई तेरा संग लपट रहो रास लोभी पतंग राम नाम जब हृदय मह नानक पात सीती कर जाहि जिस वखर को लैन तू आय राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लिहु मन मूल राम नाम हृदय मह तोल ला दुखी संत संग चाल वर त्याग विखिया जंजाल तन तन कहे सब कोई मुख उजल हर दर्ग सोए हुआ पार विरला वा पार नानक ताक सत बल हार चन साध के तोये तोये पीवर प्रसाद को अपना जियो साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुरबान सा शिवा बड़ भागी भाग सा हर की।

का सेव नाम करंग सेवका उप्रपाल नर सेवक राखन रंकार सु सेवक जहताया प्रवतार नानु सु सेवक सास सास सुमार अपने जन का परदा टाके अपने सेवक सर पर राख अपने दाख दी बढ़ाई अपने सेवक नाम जपाई अपने सेवक किया पद राख है ताकि गात में तो कोई ना राख है प्रभु के सेवका कु नाम पाहु चाहे प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नानु सो सेवक दह दह प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है पसम कर लस्कर को राख जख सास न गढ़ देवता को राख तुदी कर मानस जतन करते वह पात तुस्के करते वह वृत जात मारा न राख वरना कोई सर्व जिया कर राख सोई कह सोच कर हरि प्राण जब नानु प्रभ राख वडाण बैर बैर बैर प्रभ जपिय पिय अमृत हुमान तंत्र पिय नाम रत्न जिन गुरमुख पाया तेस की शावर नाह दृष्टा नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम राह जो जान त्रिपता ने मानता नाम नाम समान उठ बैठ सोत नाम कह नानक जन का सद काम बोलह जास जिह बै दिन रात प्रभ अपना जान की निंदात कर भगत आत्म के जाय प्रभ अपने स्मरह समाय जो हुआ हो तो सो जान प्रभ अपने का पुछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिस कगुन कही कना जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कह नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओ टैली मन तन अपना तिन जान दिख जिन जान अपना प्रभु पुछाता सो जान सर्व थो का दाता

तित कार जाय बसा मनासिक नान काटि जम फासी तद विचार कह जन साचा जनम अमर सुखा चुका चयावा गौन मिटा प्रभु सेवा त्याग शरण कर दीज व्यों रतन जन्म का हुई उदार हर हर सिमर पुराण आधार अन के पावन छूट नारी सिमरत सा सत बीत विचार हर को भगत कर्म लय मन बन सत नान फल पाए संगना चार तेरा तना तुम क्या लपटावे मूर्ख मना सत बीत कुटाम पर बनता इन ती कहु तुम कम सना था राज रंगमय विस्तार इन ती कहु हो कम छुटकारा सहस्ती राथ स्वर जूठा डम जूठ पा सर जिंदी ये तह बुझा ना बेगाना ना बिसाना कुछता ना उंगर की मात तुम लिख यान भगत बिना बाटू बे सियान हर की

अनुसार गौन निदा अनुभियंत उपान आनंदा सत बिरहर पूर्ण पूरे दयाल सब पर्वत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जाम रहु व्याप्रत पारे जीन बह पात जो जो रचियो सोत से त्यात रेहु पावे तहले मिलाई भगत करे हर कुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्य करुणा नानक के जाने जन लागो हरि कहना तुस्की आस न बिरती जाय शिव कौ सेवा बन आय कुंभुज परम पद वायु तिहु बन विचार जा कमर बस अंतरंकार बंधन तोर पै निर्वय रंधन भुजंगुर के पैर लोग सुखी है पर लोग सुहिले नानक हर प्रव्याप मेरे साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव प्रा परम आनंद राम नम तात करह विचार दुर्लभ देह का करह उदार अमृत वचन हर के गुण गाय प्राण तरन का है स्वाव आठ पैर प्रभु खो नेरा मिटया ज्ञान बिन से अंधेरा सुन बुद्धि हृदय बस साव मन छे नानक हर पाए हर पल दो स्वा राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दीखिया जह मन बसत साज प्री किया मान तन नाम जप ले बिलाय दुख दर्द मन ते पायो जाय सच वा पार करहु वा पारी दरगह निभ कि तुम्हारी कटे एक रखो मन वह नानक बह न आवह जाय ते दूर कहूँ जाय उबरा रख नार ते आय निरपाओ जप सकल पाव मिटाय प्रभु कृपा ते प्राणी छोटा जह प्रभु राख तह नाह दुख नाम जपत मन हो तो सुख चिंता जाय मिटाय अहंकार देश जन को कोई न पहचो नार स्वरूप ठाडा गुरु सूरा नानक ताग कार्य पूरा मात पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पीख तो उदरता श्रेष्ठ जन कौन जाके अनुरूप सफल दर्शन सुंदर रूप तान सेवा शिव प्रवान अंतर जम पुर वरदान जिस मन बस सोत निहाल ताक निकट नावत काल अमर पाय अमरा पद पाया साधु संगनान कर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपति संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु कला का मीठा सगल सुमिग्री अनकरांग नन दृष्टा ही नव निध अमृत प्रभु का नाम दिह मैस कविश्राम स्वर्ण समाध अनहत तह नायद कहन जाय अचरज विस्मय तिन दिखे सब दिखाय नानक दिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद काट कर व्याव रहा भगवंत तरन मह आकाश पायाल सर्वलोक पूर्ण प्रात पार बंतन पर्वत पार ब्रह्म जय सियागत स करम पावन पाण व्या संतर मह चार कुंट दह दिशे समाहि तिस्ते भी अन्न नह कोठा गुरु प्रसाद नाम सुख पाय वीर प्राण समृत मह दीख शशि अर सूर नखी अतर मह एक बाणी प्रभु सक बोले अव डोर न कभ डोले सर्व कलाकार खेल खेल मोल न पाई गुण अमोल सर्व ज्योत में जाग ज्योत तारहु स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तेन महु विशा संत जन का पीखन सा ब्राह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह सो भजन सर व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सात भजन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुकुमार न करन कराव नार प्रभु जान अंतर बसे बाहर पियो नानक दर्शन दे सा मोह अब सात किया सब सात ते प्राप्त सकदी उत्पाद ते पावे तो कर विस्तार ते पावे तो एक अंकार अनक करा लखी न जाय जो पावे ते लई मिलाई कौन निकट कौन कहिया दूर आप या पा पर पूरे अंतर्गत तुझ सब जनाय नानक तुझ जना बुझाय सर्व पूता वरतर सर्व नयन आपिख नारा सगल सामग्री जाकर तना पंजा साहब ही सुना बंजान कील बनाया आज्ञा करी की माया साहब के मत अलिप तो रह जो किस कहण सो आप ही कह आ गया आवा गया जय नानक जाऊ पावत नय सुमाई इस ते हुए सो अनाह।

काम है, अते हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमाण हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, नृभूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृश्रीक हैं, नृलंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अक्रम हैं, अभ्रम हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अवाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाथे, नमो भाण भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भाण भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पाण पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे, समस्ति विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो

मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग शेदी अभेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्त धामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं प्रियंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग युगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले।

अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं ज्योता, सर्वं मुक्ता, परसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, प्रमाथं प्रमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, नृभंगी स्वरूपे, स्रभंगी अनूपे, न पोत्रै न पुत्रै, न सत्रै न मित्रै, न तातै न मातै, न जातै न पातै, नृसाकं श्रीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रवाहै, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्व प्रसाद, कै जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी देहंद हैं, के राजक रहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल नवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासल फिकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, गंजल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब के राह हैं, के नरकंग प्रणास हैं, बेहस्तुल निवास हैं, के सरपुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अधीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, अमेसुल अपेख हैं, जिमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुर अजमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुवास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अभंग हैं, मधुपार छंद त्व प्रसाद, मुणमण प्रणाम, गुणगण मदाम, हर भर अगंज, हर नर प्रभंज, अणगण प्रणाम, मुणमण सलाम, हर नर अखंड, भर नर अमंड, अनुभव नास, मुणमण प्रकाश, गुणगण प्रणाम, जल थल मुदाम, अणछिज अंग, आसन अभंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अभंग।

हैं, आकृताकृत हैं, धरणी धृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजपाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं।

मिलियो बड़भागी। पूर्ण कमाई वाले साधु की संगत मिल गई। साधु की संगत ने गुरु के दर्शन करवा दिते। वड्डियां भागां वाला हिरदा बन गया। तो इस नाल होया कि जब संगत विच आया हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन किते, जिंदगी दे किते हुए पाप दूर हो गए। सतगुर साहु पाया वडदाना, हर किए बहु गुण सांझा। अगलियां पंक्तियों में पातशाह फरमान करते हैं, जदों पूरे सतगुरु की संगत प्राप्त हुई, यह हिरदा गुणा का खजाना बन गया। औगुण दूर हो गए, हुण गुणा दे नाल भरपूर हो गया। किहड़े गुण? वह गुण जिन्हां गुणा करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं खुशियां मिलदीआं।